रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रुबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चार। रुबाई चार पंक्तियों की कविता है, जिसकी पहली दो और छोटी पंक्तियां तुकात्मक होती है और तीसरी लाइन आजाद रखी जा सकती है। रुबाई का नाम सुनते ही उमर खयाम का नाम याद आता है, जो दुनिया भर में अपनी रुबाइयों से मशहूर हो गए हैं। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, जिनके बारे में प्रोग्राम के इस पाठ में बताते हैं।

उमर खयाम अपने किताब रुबाइयात के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उमर खयाम की रुबाइयों की शोहरत में अंग्रेजी भाषा के कवि एडवर्ड फिट्जरल्ड का बड़ा हाथ है। फिट्जरल्ड द्वारा इनकी रुबाइयात के अंग्रेजी अनुवाद के बाद इनका नाम मशरिक और मगरिब दोनों में मकबूल हो गया। जेरल्ड खुद भी अच्छे कवि थे, लेकिन कविता के पाठकों में वो अपनी कविताओं से अधिक खयाम की रुबाइयों के अनुवादक के रूप में अधिक पहचाने जाते हैं। जीवन के अर्थहीनता में व्यक्तिगत अर्थ की खोज खयाम की रुबाइयों का केंद्रीय विषय है। पश्चिमी संस्कृति में उमर खयाम की प्रसिद्ध ही अंग्रेजी विक्टोरियन कवि एडवर्ड फिट्जरल्ड से उत्पन्न हुई, जो उनसे अपने मित्र प्राच्यविद एडवर्ड कोले के माध्यम से मिले, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालय में फारसी पांडुलिपियों के साथ काम करते थे। सन 1859 में फिट्जरल्ड ने खयाम के अपने अनुवादों की पहली पुस्तक प्रकाशित की। कुछ समय के लिए उन्होंने पाठकों का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन कवि और कलाकार दांते गब्रियल रोसेटी के उन कविताओं से मिलने के बाद जिन पर रुबाइयों ने बहुत प्रभाव डाला, फिट्जरल्ड के अनुवाद में खयाम की कविता जल्दी लोकप्रिय हो गई। पहले संस्करण का प्रचलन जल्दी से बिक गया और फिट्जरल्ड ने अपने जीवन काल के दौरान 4 नए संशोधित संस्करण जारी किए, जिसमें अंततः 101 कविताएं शामिल थी। प्रसिद्ध आलोचक जॉन रेस्किन ने लिखा है, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। मेरी राय में इस किताब के रूप में शानदार और यही एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ। सन 1929 तक फिट्जरल्ड द्वारा अनुवादित उमर खयाम की रुबाइयात पहले ही 129 बार प्रकाशित हो चुकी थी। इसे कभी कभी अंग्रेजी भाषा में सबसे लोकप्रिय कविता पुस्तक के रूप में वर्णित किया जाता है।

उमर खयाम के रूसी अनुवाद सन 1890 के दशक में दिखाई देते हैं। पहला प्रकाशन 16 कविताओं का था, जिसका शीर्षक था उमर खयाम से। फारसी से वेलिच को द्वारा अनुवादित सन 1891 में यूरोपीय वैस्निक में प्रकाशित हुआ। खयाम के रूसी अनुवादों के इतिहास में प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी या फ्रेंच से किए गए अनुवाद न कि फारसी मूल से प्रचलित थे। वे बहुत स्वतंत्र थे और एक अनुवाद की तुलना में उमर खयाम की कविताओं के विषयों पर भिन्नता की तरह थे। इस शैली की ठोस रूप विशेषता का तुरंत सम्मान नहीं किया जाने लगा। उदाहरण के लिए मजूरिन की पुस्तक की कई कविताएं 8 पंक्तियां थी। 4 पंक्ति मानदंड का सख्ती से पालन करने वाले पहले अनुवादक कंस्टेंटिन बालमन थे, जिन्होंने 11 रुबाई प्रकाशित किए थे। सन 1998 में पेरिस में प्रकाशित उमर खयाम पुस्तक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। रुबाइयात, जिसके लेखक इवान खर्जेवस्की थे, सोवियत संघ में उनके अनुवाद बहुत बाद में ज्ञात हुए, केवल सन 1954 में। सन 1920 के दशक में सोवियत संघ में ओसिप रूमेर द्वारा फिट्जेराल्ड की पुस्तक का एक पूर्ण अनुवाद बनाया गया था। बाद में रूमेर ने फारसी भाषा का अध्ययन किया और मूल रूप से उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया। युद्ध के बाद खयाम के अनुवाद कई सोवियत कवियों द्वारा किए गए थे। सन 1970 के दशक की शुरुआत में प्राच्य साहित्य के मुखिया संपादकीय कार्यालय नौका पब्लिशिंग हाउस ने उमर खयाम के नए अनुवाद के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके विजेता गेरमा प्लिसेत्स्की बने, जिनकी पुस्तक उमर खयाम की रुबाइयात सन 1972 में प्रकाशित हुई थी।

भारत में रुबाइयात का अनुवाद हिंदी के साथ साथ और भी कई भाषाओं में हुआ है। हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद खयाम की मधुशाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके रुबाइयात से प्रेरित होकर ही उन्होंने बाद में मधुशाला लिखी, जो हिंदी की एक अमर कृति है। हरिवंश राय बच्चन भी फारस के इस महाकव्या के जादू से नहीं बच सके। बच्चन की मुलाकात उमर खयाम की रुबाइयों से फारसी भाषा में नहीं हुई। वो उमर खयाम से फिट्ज़रॉल्ड के अनुदित अंग्रेजी रूप के माध्यम से मिले थे। बच्चन अंग्रेजी के शिक्षक थे। शेक्सपियर के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। जेराल्ड की तरह उन्होंने भी रुबाई के विशेष छंद को छोड़कर अपने ही मित्र में मधुशाला की चौपाइयों की रचना की है। ये भावभूमि के स्तर पर भी खयाम के प्रतीकों और संकेतकों के बावजूद खयाम से अलग भी है और 600 साल में जो समय बदला है उस बदलाव से जुड़ी हुई भी है। मधुशाला की रुबाइयों का प्रथम पाठ बच्चन ने सन 1934-35 में बनारस में किया था। अपने प्रथम पाठ से अब तक मधुशाला स्वर्ण जयंती से गुजर के हीरक जयंती मना चुकी है। सन 1984 में इसकी स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्होंने एक नई रुबाई भी लिखी थी। मधुशाला अकेले किताब है जो अपने जन्म से अब तक कई जन्म ले चुकी है और आज तक पाठकों के साथ चलती फिरती है और बचित में मुहावरों की तरह इस्तेमाल होती है। बच्चन ने कई विधाओं में लिखा है और सारी लिखा है, लेकिन ये वो पुस्तक है जो अमिताभ के जन्म से पहले वजूद में आई थी और उनकी फिल्मी शोहरत के बगैर भी जनजान में मशहूर है, पहले भी थी और अब ही है। इस पुस्तक की लोकप्रियता का एक कारण तो इन रुबाइयों में वे अनोखे प्रतीक है, हाला, प्याला, साकी, बाला आदि, और दूसरा आकर्षण इसकी शब्दवाली है जिसमें आम आदमी अपने दुख सुख का इजहार करता है। इन्हीं के साथ इन रुबाइयों का मुख्य पात्र धर्म जात के घेरे से बाहर होकर सद्भाव की रोशनी फैलाता है। होश वालों की दुनिया में वो ऐसा बेहोश है जो न हिंदू है न मुसलमान, सिर्फ इंसान है, और वो इंसान जितना सूफी है और उतना ही रिंद है। मुसलमान और हिंदू दो है, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक ना जब तक मंदिर मस्जिद को जाता, बेर बरहाने मंदिर मस्जिद मेल

प्यारे श्रोताओं, दुनिया के कई भाषाओं में उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद के बारे में आपने सुना। अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे। हमारे साथ रहिए।

प्यारे श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण से कुछ जानकारी विभिन्न विषयों पर आपने सुना। एक घंटे के जरिए आपके साथ है हम नुशफरीन उलिमवा और अब मंसूर इस्माइल, जो आपकी खुशी के लिए कोशिश की। आवाज़ी तौजी के दूसरे कार्यक्रमों जारी है। नमस्ते।

0: आवाज ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजी ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर

उमर खयाम अपने किताब रुबाइयात के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उमर खयाम की रुबाइयों की शोहरत में अंग्रेजी भाषा के कवि एडवर्ड फिट्जरल्ड का बड़ा हाथ है। फिट्जरल्ड द्वारा इनकी रुबाइयात के अंग्रेजी अनुवाद के बाद इनका नाम मशरिक और मगरिब दोनों में मकबूल हो गया। जेरल्ड खुद भी अच्छे कवि थे, लेकिन कविता के पाठकों में वो अपनी कविताओं से अधिक खयाम की रुबाइयों के अनुवादक के रूप में अधिक पहचाने जाते हैं। जीवन के अर्थहीनता में व्यक्तिगत अर्थ की खोज खयाम की रुबाइयों का केंद्रीय विषय है। पश्चिमी संस्कृति में उमर खयाम की प्रसिद्धि अंग्रेजी विक्टोरियन कवि एडवर्ड फिट्जरल्ड से उत्पन्न हुई, जो उनसे अपने मित्र प्राच्यविद एडवर्ड कोले के माध्यम से मिले, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालय में फारसी पांडुलिपियों के साथ काम करते थे। सन 1859 में फिट्जरल्ड ने खयाम के अपने अनुवादों की पहली पुस्तक प्रकाशित की। कुछ समय के लिए उन्होंने पाठकों का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन कवि और कलाकार दांते गब्रियल रोसेटी के उन कविताओं से मिलने के बाद जिन पर रुबाइयों ने बहुत प्रभाव डाला, फिट्जरल्ड के अनुवाद में खयाम की कविता जल्दी लोकप्रिय हो गई। पहले संस्करण का प्रचलन जल्दी से बिक गया और फिट्जरल्ड ने अपने जीवन काल के दौरान 4 नए संशोधित संस्करण जारी किए, जिसमें अंततः 101 कविताएं शामिल थी। प्रसिद्ध आलोचक जॉन रेस्किन ने लिखा है, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। मेरी राय में इस किताब के रूप में शानदार और यही एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ। सन 1929 तक फिट्जरल्ड द्वारा अनुवादित उमर खयाम की रुबाइयात पहले ही 129 बार प्रकाशित हो चुकी थी। इसे कभी कभी अंग्रेजी भाषा में सबसे लोकप्रिय कविता पुस्तक के रूप में वर्णित किया जाता है।

उमर खयाम के रूसी अनुवाद सन 1890 के दशक में दिखाई देते हैं। पहला प्रकाशन 16 कविताओं का था, जिसका शीर्षक था उमर खयाम से। फारसी से वेलिच को द्वारा अनुवादित सन 1891 में यूरोपीय वैस्निक में प्रकाशित हुआ। खयाम के रूसी अनुवादों के इतिहास में प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी या फ्रेंच से किए गए अनुवाद न कि फारसी मूल से प्रचलित थे। वे बहुत स्वतंत्र थे और एक अनुवाद की तुलना में उमर खयाम की कविताओं के विषयों पर भिन्नता की तरह थे। इस शैली की ठोस रूप विशेषता का तुरंत सम्मान नहीं किया जाने लगा। उदाहरण के लिए मजूरिन के पुस्तक की कई कविताएं 8 पंक्तियां थी। 4 पंक्ति मानदंड का सख्ती से पालन करने वाले पहले अनुवादक कंस्टेंटिन बालमन थे, जिन्होंने 11 रुबाई प्रकाशित किए थे। सन 1998 में पेरिस में प्रकाशित उमर खयाम पुस्तक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। रुबाइयात, जिसके लेखक इवान खर्जेवस्की थे, सोवियत संघ में उनके अनुवाद बहुत बाद में ज्ञात हुए, केवल सन 1954 में। सन 1920 के दशक में सोवियत संघ में ओसिप रूमेर द्वारा फिट्जेराल्ड की पुस्तक का एक पूर्ण अनुवाद बनाया गया था। बाद में रूमेर ने फारसी भाषा का अध्ययन किया और मूल रूप से उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया। युद्ध के बाद खयाम के अनुवाद कई सोवियत कवियों द्वारा किए गए थे। सन 1970 के दशक की शुरुआत में प्राच्य साहित्य के मुखिया संपादकीय कार्यालय नौका पब्लिशिंग हाउस ने उमर खयाम के नए अनुवाद के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके विजेता गेरमा प्लिसेस्की बने, जिनकी पुस्तक उमर खयाम की रुबाइयात सन 1972 में प्रकाशित हुई थी।

भारत में रुबाइयात का अनुवाद हिंदी के साथ साथ और भी कई भाषाओं में हुआ है। हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद खयाम की मधुशाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके रुबाइयात से प्रेरित होकर ही उन्होंने बाद में मधुशाला लिखी, जो हिंदी की एक अमर कृति है। हरिवंश राय बच्चन भी फारस के इस महाकव्या के जादू से नहीं बच सके। बच्चन की मुलाकात उमर खयाम की रुबाइयों से फारसी भाषा में नहीं हुई। वो उमर खयाम से फिट्ज़रॉल्ड के अनुदित अंग्रेजी रूप के माध्यम से मिले थे। बच्चन अंग्रेजी के शिक्षक थे। शेक्सपियर के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। जेराल्ड की तरह उन्होंने भी रुबाई के विशेष छंद को छोड़कर अपने ही मित्र में मधुशाला की चौपाइयों की रचना की है। ये भावभूमि के स्तर पर भी खयाम के प्रतीकों और संकेतकों के बावजूद खयाम से अलग भी है और 600 साल में जो समय बदला है उस बदलाव से जुड़ी हुई भी है। मधुशाला की रुबाइयों का प्रथम पाठ बच्चन ने सन 1934-35 में बनारस में किया था। अपने प्रथम पाठ से अब तक मधुशाला स्वर्ण जयंती से गुजर के हीरक जयंती मना चुकी है। सन 1984 में इसकी स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्होंने एक नई रुबाई भी लिखी थी। मधुशाला अकेले किताब है जो अपने जन्म से अब तक कई जन्म ले चुकी है और आज तक पाठकों के साथ चलती फिरती है और बचित में मुहावरों की तरह इस्तेमाल होती है। बच्चन ने कई विधाओं में लिखा है और सारी लिखा है, लेकिन ये वो पुस्तक है जो अमिताभ के जन्म से पहले वजूद में आई थी और उनकी फिल्मी शोहरत के बगैर भी जनजान में मशहूर है, पहले भी थी और अब ही है। इस पुस्तक की लोकप्रियता का एक कारण तो इन रुबाइयों में वे अनोखे प्रतीक है, हाला, प्याला, साकी, बाला आदि, और दूसरा आकर्षण इसकी शब्दवाली है जिसमें आम आदमी अपने दुख सुख का इजहार करता है। इन्हीं के साथ इन रुबाइयों का मुख्य पात्र धर्म जात के घेरे से बाहर होकर सद्भाव की रोशनी फैलाता है। होश वालों की दुनिया में वो ऐसा बेहोश है जो न हिंदू है न मुसलमान, सिर्फ इंसान है, और वो इंसान जितना सूफी है और उतना ही रिंद है। मुसलमान और हिंदू दो है, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक ना जब तक मंदिर मस्जिद को जाता, बेर बरहाने मंदिर मस्जिद

प्यारे श्रोताओं, दुनिया के कई भाषाओं में उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद के बारे में आपने सुना। अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे। हमारे साथ रहिए।

प्यारे श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण से कुछ जानकारी विभिन्न विषयों पर आपने सुना। एक घंटे के जरिए आपके साथ है हम नुशफरीन उलिमवा और अब मंसूर इस्माइल, जो आपकी खुशी के लिए कोशिश की। आवाज़ी तौजी के दूसरे कार्यक्रमों जारी है। नमस्ते।